0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 9:33 எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 கேட்டுட்ருக்கீங்க. வாட்ஸ்அப் வழி நேர் விருப்பம் நிகழ்ச்சியில் அப்படியே பாட்டு ஒரு ஒருத்தரும் சூப்பராக கேட்டுட்ருக்கீங்க. அந்த வகையில் அடுத்த பாடல் யாருக்காக அப்படின்னா, லூயிஸ் செல்வராஜ் வடவள்ளி கோவையிலேருந்து கேட்டிருக்காரு. தீனா திரைப்படத்திலிருந்து பாடல் வருது, கேட்டு நம்ம எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். அந்த வகையில் உங்கள் பாடலை நாங்களும் கேட்டு என்ஜாய் பண்ண வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். 7598501005 நம்பருக்கு படம், பாட்டு, உங்க பேரு, அப்புறம் ஊரு

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 11:33. மெலடி மேஜிக் நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 மனதை வருடும் அழகான பாடல்கள் வரிசையா வந்துட்டு இருக்கு. அந்த வகையில பௌர்ணமி இரவு, பனி விழும் காடு, ஒத்தை அடிப்பாத ஓன் கூட புடிநட, எத்தனை பேருக்கு இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு தெரியாது, நடக்குதோ இல்லையோ கேக்குறோம். கடல் திரைப்படத்திலிருந்து சூப்பரான மெலடி சாங்

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: வரலாற்றில் இன்று நேரம் 12:32. நிகழ்ச்சியில அடுத்ததா ஜூலை 10 தேதி பிறந்த சிறந்தவர்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். 1509 ஆண்டு ஜூலை 10 ஜான் கல்வின் அப்படின்ற பிரெஞ்சு இறையியலாளர் போதகர் வந்து பிறந்திருக்காரு. அவரோட முக்கியமான ஒரு நூல் குறித்து இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். 1536 அவர் எழுதிய கிறிஸ்தவ மத நிறுவனங்கள், இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் த கிறிஸ்டியன் ரிலிஜியன் என்ற நூல் புராட்டஸ்டன்ட் சிந்தனையில பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. சுவிட்சர்லாந்துல ஜெனிவா நகர்ல தனது போதக பணியின் மூலமா தேவாலயத்தை ஒழுங்குபடுத்தி பல சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வந்த ஜான் கல்வின் வந்து பிறந்த தினம்தான் இன்று.